कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई। तुदे आपे भावै सोही वरतै जी, तू आपे करह सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिर सब गोई। जन नानक गुण कावे करते के जी, जो सबसे का जान होई अस महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थी सी, जो तू दे सोई हो पाई रहा। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनू कृपा करे तन्ना मृतन पाया।

मानिक न चेत स मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण करै रहा। ना हो जति सती नि पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया। प्रणुत नानक तन के सरणा जंतु नाही विसरिया स महला पनमा। पई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोपिन मरण के त्रिवरिया। अवर काज तेरा कितन काम मिर साध संगत भज के वृंदा। सरन जामला पवजर तन कै जन्म बिरथा जात रंग मा के रहा।

कर पूरा। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उद कर करा करतारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब य करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मृत देह तर सब हूँ। जिते बदन सिर सतारे, आपे अपनी बूझ चार। तुम सब ही ते रहत निरारम, जानत भेद भेद रियारम।

सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कौआ अख्तरे नियान्यो राम रही पुराण कुरान अनेक कह मतिक न मान्यो सिमरत शास्त्र बेसपै बोपीत कह अमेक न जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कृपा श्री सपान कृपा तुमरी कार मैं ना क्यों सब तोहे बखान दोहरा

प्रसाद अनंत पिया मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुर तैं पाया सह सेती मन वधिया वधाइया राग रतन परिवार परियां शब्द कावणे आईया।

ऐसा नाम जपो मन रंग नान पाइए साध के संग जे मार के गन जाय नको सार का ना उहां संतोष साहिब जे पड़े मन पर हर का नाम संग जियारा

हर हर अमृत बल खाए भगत जना के भरत नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम दरे जन कोट हर जस करत हर जस करत संत दिन रात हर हर हुक सत कुमार हर जन के हर नाम तान पा ब्रह्म जन की नु दान मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन के ब्रत बबे के हर का नाम जन को मुक्त जोगत हर के नाम जन को ते भोगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कपरे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई

अस्त पिसति वै अगन माहि हूत पुराण कनक असभ हैबर भूता न्यौरी कण करिबो आसन जैन मार संजम साधन है।

मन ते फुटै। सोच करे दिन सर रात, मन के मैं न तन ते जात। इसते को बो साधना करे, मन ते कब हुन दिख्या टरै। जर तो वह बोधे अनीत, सुध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की मैं ऊच, नानक ना उदरे पतत बहमूच। बहुत सियानप जम का फो ब्यापे, अनक जतन कर त्रिसन न त्रापै। पेखन एक अग्नि बुझै, कोठ उपा दरके नि सजै। छूट चनाई उप्यार, मुहि प्यापे माया जाल। अवर करतूत सगली जमडान, गोपिंद भजन बिंतली माने। हरका नाम जब तुख जाय, नानक पूले सह सबाय। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मटावे, हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग एहु में छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरणी परै।

ठाकुर सस दा जूरे ताकुन दा जंत दूरे जाके टहल पावे दर के मत सब सारे भूते जान सदा सदा ए पूर्ण हार नानक राखण हर पार तन त्या कूड़ी सर चै साच छोड़ झूठ साच छोड़ झूठ संग मचे जो शरणा सुवस्त्र कर माने जो हुबन सो दूर प्राणे छोड़ जाय तिसका श्रम करे संग साहित पर हरे चंदन दे पुतारी तो एक घर तब प्रीत पसम संग हो अंत कूप मैं पत तो बिखरा नान काल लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु के मान चाल लोक पचारा कर दिन रा बाहर पेख अंतर मन माया शपश नाही काश करे छपाया।

बरुआ के ग्रह पितर वसे अंत केरमा रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल ने आपे मूड़े चीत।

ज्ञान मिथ्या सुप्रकृत कुमार अस्तर प्रसाद के शरणानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रुणपन दर्शन मिथ्या हक पर दल कुहर मिथ्या नेतर पेख पात्र रूपार मिथ्या रचना पूजन अनुस्वार मिथ्या चरण पर विकार कुतावे हे मिथ्या मन पर डोल पावे मिथ्या तनि पर पुकारा मिथ्या बास डे पिकारा बिन पूजे मिथ्या सब पे सफर दे नानक हर नाम ले बिरथी साध की अर्जा सर बिना कह होव सूचा बिरथा ना बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध।

राजा, कबू भिखारी नीच कसा जा, कबू अबकीरत में आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यों प्रभला खेत भी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तरती स्नान, कबू सिर साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस पतंग होए जिया, नानक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, ज्यो प्रभ पावे तिवे न जावे, जो दिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबू साध संगत ये पावे, उस स्थान ते पवर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंथन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यो जल में जले आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना,

जिसके अंतराज अमान सो नर्ग पाती हो वध सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो दुबिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बोजोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे तनवंता हो कर भगर भावे तिन समान कर संग न जावे बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस पल पीतरता का होए बिनास सब थे आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अवमान सो जन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले फिर सारे अनक तपस्या करे अहंकार नर्क स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निद्रव है हर दरगाह को कैसे गव है आप आपस को जो भला कहाव है तिसे भलाई निकट नयाव है सर्व की रेन जाका मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जाबे जा

क्या समाए, आप उपदेशे समझे आप, आपे रजिया सबके साथ, आप किनो आपन विस्तार, सब किसी उसका हो करने हार, उसते भिन्न कहो किसी होए, थान थनंतर ये कैसे होए, अपने जल तब करने हार, कौत करे रंग पार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद के ने बखयानी, सच सच सच सच सच सब कीना, कोट मदे किन बिरले चीना, पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, काट काट सुनी सरण बखयानी, पवित्र पवित्र पवित्र पनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत, श्लोक संत सरन जो जन परे, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सोभाते हीन, संत के हृदय को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन कागजों लवे, संतन के दुखन सर्प जोहन पाए, संत के दुखन तिर जोहन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब कौशल, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच न जाए, संत दुखी का थौक नाहे, नानक संत पावे तायो भी गत पाए, संत का निंदक मा अदताई, संत का निंदक खिंटक न पाई, संत का निंदक मा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत के निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का निमित, संत के दुखी को डान लाग, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म है मरे, संत के दुख न सुख ते टर, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ताले मिलाए, संत का दुखी अद बीज से टूटे, संत का दुखी कि काज न पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर दे तो था, जो सास बिना मृत किलो था, संत के दुखी की जड़ किश नाय, आपन बीजा पे ही खाय, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार, संत का दुखी यूं मिल लाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक इंदन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत में दुहेला, संत का दुखी धर्म तैत, संत का दुखी सदमिथया कैद, किरत निंद का तुरी पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थे आ, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले से जाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दोष न तिष्ठ कोए, जैसा पवे तैसा कोई होए, फै आकीर्तन मेटह कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसके वो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत

हर गुण गाय अमृत रस चाखे, ओट गही संता दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृत्यु को जीवालन हार, भूखे को देवते आधार, समुदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए, सब किस तिसका वो करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग, जब जन सदा सदा दिन रैनी, सब ते उज निर्मली करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुरु की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभजीत।

खेम शांत रिद्ध नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ये फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहेब होर गुरुद्वारिया गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार से

गुर प्रसाद काहू जाते, हर प्राण प्रभु सुख दाते। गुर प्रसाद काहू जाते, रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, तिनको काल ना खाते।

दुख रुगा प्रभ दृष्ट तुहारी हाते। सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु साहब जी के मुबारक चरणों के विच सुभायमान जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी माण योग साध संगत गुरु साहब जी की रहमत बख्शिश दे सरका सजे दरबार दियां आप जी हाजरियां पर रहे सी धनवाद है सत्कारयोग गुरु सवारे ढाडी जथे दा ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी बदनी कलां वालिया दा जत्था जो आप जी नूं ढाडी वारा गुर इतिहास सरवण करवा रहा सी। गुरु चरणा दे विद्वान की समाप्ति की अरदास हुई है। पावन मुख वाक गुरु साहब जी ने बख्शिया है जो राग देव गंधारी विचों पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज तिना की मुबारक रसना चो उच्चारण किया हुआ है। मुबारक शब्द है जो आप जी ने मुख वाक के रूप में श्रवण किया है। पातशाह मेहर करन बख्शिया पावन उपदेश साडी सब की जिंदगी का जीवन का आधार बने गुरु चरणा विच अरदास है और इहदे नाल ही सजे हुए दीवान की संपूर्णता है। गुरु प्यारे एक अखंड पाठ साहब की सेवा नगर लौंगोदेवा जीरा दियां संगतां वालों जो चल रही है कल रोज तो श्री अखंड पाठ साहब आरंभ ने जिन्हां दे भोग सवेरे 9:30 बजे पाए जाने हैं और अरदास तो उपरंत इसे मेन दीवान हाल के हफ्तावारी जी समागम सजणगे जिहदे विच उच्च कोटि के कीर्तनी जिथे जिथे आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़नगे कथा होवेगी और अखीर विच ढाडी जत्था ढाडी वारा गुर इतिहास सरवण करवाएगा। बहुत सारिया संगतां दे कई वारी फोन आउंदे ने गुरद्वारा साहब दे विच खंडे बाटे की पावल 13 सितंबर दिन एतवार नूं तैयार की जा रही है सवेर नूं तो अमृत बलाकी सजना नूं बेनती है कि जो जिहड़ियां भी संगतां अमृत छकण दियां खंडे बाटे की पावल लैण दियां चाहवान होण अपने नाम जरूर बाहर आप जी दर्ज करवा सकते हो तो यह बेनती प्रवान करनी। नाल दी नाल गुरबाणी संथिया दियां क्लासां दी रमता गुरद्वारा साहब विच हो चुकी है। ये गुरबाणी संथिया दियां क्लासां वीकडे दे विच रोज़ाना सोमवार तो लैके वीरवार तक शाम 7 to 8 बजे तक इत्थे गुरद्वारा साहब दे विच लग्या करनगियां जो कि आरंभ ने तो आप जी इन्हां गुरमत क्लासां दा भी लाहा लै सकदे हो। तो आओ हुण कड़ा प्रसाद दा वरतारा हो रहा जिन्हां संगतां ने प्राप्त नहीं कीता आप जी प्राप्त कर सकदे हो। उपरंत गुरु का लंगर आई हुई सारी संगत वास्ते सेवक परिवारों वालों तैयार है सब ने छक के जाने की कृपालता करनी। जुड़ मिल बैठी सारी संगत का धन्यवाद। सुखासन की सेवा संगत की आमद मुख रखद हो थोड़ी देर रुक के की जाएगी तो कड़ा प्रसाद प्राप्त कर लैन तो उपरंत गुरु का लंगर सारी संगत ने छक के जाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कबीर डूबा था पै उबरियो, गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जरजरा, तब उतर परियो हाउ फर्क। कबीर पापी भगत ना पावई, हर पूजा ना सुहाए।

कबीरं बैद मुआ रोगी मुआ सब संसार एक कबीरा ना मुआ जेह नाही रोवण हार। कबीर राम ना ते आयो मोटी लागी खोर काया हांडी काठ की ना ओह चरै बहोर। कबीर

कबीर रस को गांडो चूसिया गुण को मरिया रोए अवगुणिया रे मानस भलो न कहिए कोए। कबीर गागर जल परी

गले हमारे जेवरी जहाँ खिंचाए तहाँ जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चितई एह जपनी क्या होए। कबीर बिरो पुयंगम मन बसै मंत न मान कोए।

कबीर बैद कहे हों ही पला, दारू मेरा वस एह तो बस्त गोपाल की, जब पावे ले खास। कबीर नौबत अपनी दिन दस।

कबीर रमैया कंठ मेल चूके सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम ले लाए।

कबीर बन के दादी लाकरी ठाडी करै पुकार, मत बस परो लुहार कहे जा रहे दूजी बार।

साकत संग न कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर, जग में चेत्यो जान कै, जग में रहे समाए। जिन हर का नाम न चेत्यो,

अवरयास निरास नरक परे ते मनई जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत चाले थे हर मिलन को बीच अटके उचित।

कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार। जंत बिचारा क्या करे चले बजावन हार। कबीर माए मुंडो तेह गुरु की जाते परम न जाए। आप डुबे चो बेद में चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए।

कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाले ओ बहुत कटंब धंधा करता रह गया भाई रया ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के

जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गद ही हुए कै अवतरे पार सह मन चार।

जोत बिना जगदीश की, जगत उलंघे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजो पूत कमाल। हर का सिमरन छाड़ के, कर ले आया माल।

चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कै के कहो, कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा यूही रहो हर खगुण गाए।

जैसे बचरे कूंज मन माया ममता रे, कबीर अंबर कनहर छाया बरख परे सरताल, चातृक ज्यों तरसत रहै तिनको कौन हवाल।

जाके संग ते बिछड़ा ताहीं के संग लाग। कबीर संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ। पेखत ही पुनीत होए पेट।

मसके कर्मक पाट पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अभय कर अब करता सोए ताल। पाछ कछु ना होएगा जो सिर

दिसै चंचल बहुगुणा मत ही नाना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जमना करै तिसकार, जिन यह जमुआ सिरजिया सो जपया परवदगार। कबीर कस्तूरी पिया पवर पे सब दास, ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच परयो कुटुंब कै,

पूजन रत्न करोड़, कबीर एक अचंपो देखियो, हीरा हाट बिकाए, भंजन हारे बाहरा

Lord. कबीर है गै बाहन सकन कन छत्रपति की नार तौस पटंतर ना पुजै हरजन की पनहार।

ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो, हर गया बहुरै बित कबीर सेवा को द्वे पले।

तब कुल किस का लाजसी, जब ले तरे मसान। कबीर डूबे गोरे बाप रे, बहु लोगन की कान। पारोसी के जो हुआ, तुम अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी, नाना विद को नाज।

कबीर कोठी काठ की दहदस लागी आग। पंडित पंडित जल मुए मूरख उबरे भाग। कबीर संसार दूर कर कागद देह बिहाए। बावन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए। कबीर संत न छाड़े संत ही जो कोटक मिले असंत।

कै जानै अपन तनी, कै दास दीवानी होए। कबीर भली पई जो पौ प्रया, दिसा गई सब भूल। ओरा गर पानी पिया, जाय मिलियो टल कूल। कबीरा तूर सकेल कै, पुरिया बांदी देह। दिवस चार को पेखना, अंत खे की खेह। कबीर सूरज चांद कै, उदय पई सब देह। गुर गोबिंद के बिन मिलै, पलट पई सब खेह।

कबीर अंजनों किछु जानिया नहीं, तिन मुख नींद बिहाए। हमो जो बुझा बुझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और

कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए। जा करण तू बांग दे, दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए। कबीर जाके दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेह सिमर

कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाउ हलाल दफ्तर लेखा मांगी है तब हुए गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचड़ी जा मैं अमृत लोन हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटा मोह तन ताप हरख सोग दाजे नहीं तब हर या पे आप।

अनेक से अन्य पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज का बे हो जाए था आज्ञा मिलया खुदाए। साई मुझ से लर प्रया तुझे किन फुरमाई गाए।

खट दर्शन संसे परे अर चौरासी सिद्ध। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो

कबीर काणी पीड़ ते सतगुर लिए छड़ाए, परा पूर्ब ली पावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए ना हर पजे।

तिसही महे समाहे, कबीर की चढ़याटा गिर प्रया, किछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबिया, सोई निबिया साथ। कबीर

कबीर जो मैं चितव ना करे क्या मेरे चितवे होए। अपना चितवे हर करे जो मेरे चित ना होए। महला तीजा।

कबीर राम रतन मुख कोथरी पारख आगे खोल। कोई आए मिले गो गाह की ले गो महंगे मोल।

सुफलफलंत कबीर साधु संग प्राप्ति लिख्या हुए ललाट मुकत पदार्थ पाई है ठाक नया विकट काट। कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन सेती गोष्टे जो किन सो लाभ। कबीर

पंडित डोलै अंध गत यर चीनत नाही संत कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत।

मत होदी हुए आणा, ताण होदे हुए निताणा, अणहोदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए।

प्रसाद, सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा, आद पुरख करतार करण कारण सब आपे, सर्व रहयो भरपूर सगल कट रहयो ब्यापे, व्यापत देखियां जगत जान कौन तेरी गत, सर्व की रख्या करे आपे हर पात, ये बिनासी ये बेगत आपे आप उत्पत, ये कह तुम ही ये कह अंध नाही तुम पत, हर अंत नाही पारावार कौन है करै विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जीह क्या बकान हा के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार, पार परही ते परै अपर अपार पर, अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धार, उपत परलो एक निमक तू कर, आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट प्राचत जाहे नाम लिये हर हर, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जीह क्या बखान हा के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए विस्तारे, पूर रहो सर्ब में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक लख मुरारे, आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे, बरन चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जीह क्या बखाना हा के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निधानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं, उचे ते उचो जाने जय प्रभ तेरो थानं, मन धन तेरो प्राणं एकै सूत है जहानं, कवन उपमा देयो बड़े ते बड़ानं, जान कौन तेरो पेयो अलाखे अपार देयो, अकल कला है प्रभ सर्व को तानं, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अचल पूर्ण विनाशी, अर्कवंत अनंत रूप निर्मल विगासी,

गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समर्था नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। दावन बंद्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पावक जरियो ना जात रहो जन धूर लग। नीर नसा कस बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह चिदै हर नाम खग। उद्दम कर लागे बो पाती बिचरै अनेक शास्त्र बो खटुआ। पसम लगाए तीर्थ बो भ्रमते सूखम देह बंदे बो जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बटाए सूत के हटुआ।

सत जुग तै माणियो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगता जन दियो कल युग प्रमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फरमायो।

सवैये महले चौथे के एक ओंकार सत गुरप्रसाद एक मन पुरख निरंजन ध्यावो गुरप्रसाद हर गुण सद गावो। गुण गावत मन होए बेगासा सतगुर पूर जन की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अविनाशी अभगत ते आयो। तिस पेटे दरदर न चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन कीरे अम्यो नाम जाको फुरिया। इन सतगुरु सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया। हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सरिय भर भरे। छुटत प्रवाह आम्य अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवें संत कर मन मज्जन पुब जिनह सेवा करिया। तिन पौ निवार पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सरिय भर भरे। सतगुर मत खूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कमल सहज प्रकाश पै निरंजन कर लहा। सतगुर दयाल हर नाम दरड़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सरिया भर भरे। अनुभव अनुमान अकल बलागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे। मिट्या जन्मांत मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सरे भर परे। अपार भरे पायो अपार दी अंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने। सतगुर कै प्रसाद सहज से ती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुरु रामदास कल उचरै तै अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै आम्य रस रसन प्रकाश मिलत शांति उपजै धुरत दुरंतर नासै सुख सागुर पायो दिंत हर मग न हुटै। संजम सत संतोख सील सन्नाम फुटै सतगुर प्रमाण बिद न सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै ते अपै अमर पद पायो।

तो सहज सरोवर बास। गुरजन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय नवासै। जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नासै। गुरजन को सो प्रसन्न मानी अभिमान नवार। जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लगभग जल तारै। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सकियथो जन्म जागो। श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लागो। सतगुर खेमा ताणिया जोग जूत समाने। अनपो निजा नाम टेक जित भगत अघाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। ए राज जोग गुरु रामदास तुम हूँ रस जाने। जनक सोए जिन जाणिया उन मन रथ धरिया। सत्संतोख समाचरे अपरा सर भरिया। अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे। ई जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बणिया वै। सतगुर नामे एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन। दुख पाप कौ कत हुवै जियो। तारण तरण खिन मात्र जा को दृष्ट तारै। शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवै जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बेखिया तयन। सत्यान तावै पलक न सोवै जियो। जा को देखत दरिद्र जावै नाम सो निदान पावै। गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल धोवै जियो। सत गुर नामी एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन। दुख पाप कौ कत हुवै जियो। धर्म करम पूरे सत गुर पाई है। जा की सेवा सिद्ध सद मुन जन। सुर नर जाचहिं शब्द सारे एक लिव लाई है। फुन जाने को तेरा अपार निरपौ निरंकार। या कथ कथन हर तू जह बुझाई है। परम भूले संसार छुट्टो हो जूनी संघारो। जम को न डंड कल गुर मत त्याई है। मन प्राणी मुक्त विचार अहनस जप। धर्म करम पूरे सत गुरु पाई है।

महादेव कमन शिव सरियो एक मुख रस नर सोह जुग जूर कर। फुन मन बच क्रम जान अनत दूजा न मान नाम सो अपार सार दीन गुर रिद धर। नल का वपारस परस कच कंचना हो चंदना सुबास जस सिमर त्यान तर। जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बल बल जाऊं सत गुर सच नाम पर। राज जोग तकत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पहु आनंद तारन मनुख जन की ऊपर गाश। गुर अंगद दियो निधान अकथ कथा गयान पंचभूत बस कीने जमत न तरास। गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अगन दिखत गत चरण कमल जास। सब बिद मान्य मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास। रड जिस हि तारे ओ धरत यार व्योम यार पवन ते नीर सारे हवर नल अनाद कियो। शास्त्र ने सूर दिन सैल त्रु फल फल दियो। सुर नर सप्त समुद्र के तारियो त्र पवन जास। सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगाश। कच्चो कंचन पायो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिकते अमृत होयो नाम सत गुर मुख पण्यो। लोह होयो लाल नदर सत गुर जद तारे पाहण मानक करै ज्ञान गुर कयो बिचार। कठो श्री खंड सतगुर कियो

सतगुरु चरण जन परसिया से पश परेत सुर नर पे। जाम गुरु होए वल तने क्या गर्व दिजे, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजे। जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चा है कर, जो गुरु गुरु अहनिस जपै, जो गुरु गुरु अहनिस जपै, दास भट बिनत कह। जो गुरु नाम रिद मैं तरै, सो जन्म मरण दो थे रह। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अघन कटै सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कै। जिन गुरु न देखियो ना कियो, ते अकियत संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समृत कलयुग, सुनत समाध शब्द जिस केरे। फोन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस्त ते नेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाहे परीरे। ज्यों हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, होती जो प्यास पीयूष पवन की, बंचत सिद्ध को बिद मिलायो। पूर्ण पो मन ठौर बसो, रस भासन स्यों जो दहंग दिशतायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी, सम जलन तीर बिपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।

बचना माने ब्रह्मा दिक रुद्रा दिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना। अगमे अनंत अनादि आदि जिस कोई न जाने शिव बिरंच तर ध्यान नित जिस बेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर्णी दूसर कोई पंजन गणन समत तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जन जाकियो जन्मत रस नारस है श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित्तहिं बसै। गुरु समर्थ गै करिया त्रिव बुद्ध समत समारन कहो। त्रम तुजा फैरंत सदा यंग पुंज तरंग निवारण कहो। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना बिचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पव सागर पार उतारन को। संतत ही सत्संगत संग सुरंग रते जस गावत है। त्रम्पन तरे उतरणी तरिया पर हिलव तार न तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहाँ जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर। गहर गंभीर यथात बड़ सुभर सदा सब रतनागर। संत मराल करें कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कलयुग दुरत दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तन फिरत सगल जुग कबहुँ को पावै। आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहित बिरंच जस गावे। जा को शिव मन गहनत जात कबिलास कहो। जा को जोगी जति सिद्ध साध के अनेक तप जटा झूठ पेक किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुरु रामदास कहो। नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोग प्रगाशे। देखत दर्श पटक भ्रम भजित दुख पर हर सुख सहज बिगासे।

लोचनामाय वर कबीरपणं तन को अवतार पयो कल्पिंतर जस जगत परछायो श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तै हर परम पद पायो। मनसा कर समरंत तुजै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणं, बाचा कर समरंत तुजै तन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणं। कर्म कर तो दरस परस पारस सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जय उजय जग मैं तै हर परम पद पायो। जिहि सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिणा। जिहि

गुर जोत अर्जन माहे तरी, जग और न जाहे महातम मैं, अवतार यो जागरियान कियो। तिन के दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिने अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चूकै रे मन, ए पद्धत ते मत चूकै रे मन, भेद विभेद न जान बियो। परता शिरदै गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।

काल कोर समुद्र में बूडत थे, खब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, तत विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदारन, बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जान्यो पयो तेह सम सर सोई। तरन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो पर, पन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जन पर।

है करके हो करेन गला पिटन सिर खोहेन नाव लैन हर करन समाए नानक तन भर हार जाए रे मन डीघन डोलिया सीधे मार्ग ताओ पाछे बाग डरावनो आगे अग्न तलाओ सहसे जियरा पर रहो माँ को अवर न टंग नानक गुरमुख छूटी है हार प्रीतम सो संग बाग मरे मन मारिय जिस सतगुर दिख्या होए आप पिछाने हर मिले बोर न मरना होए कीचड़ हाथ न बूढ़ई एका नदर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सर्व सच्ची पाल अगन मरे जल लोड़ लोह बिन गुर निध जल नाहे जन मरे परमाय जे ला कर्म कमाहे जम जगात न लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तन मेला अवगणी चिंज परी गंदी आए सरवर हंस न जानिया कागुक पंखी संग साकत सो ऐसी प्रीत है बूझो ज्ञानी रंग संत सवा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नाभन नानका गुर तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जाहर भगत न पाओ पैदा खादा बाद है जामन दूजा पाओ बेकुण सुनना झूठ है मुख झूठा अलाओ नानक नाम सलाहे तू होर हो मैं आवो जाओ हैन विरले नाही कणे खैल फैल फकड़ संसार नानक लगी तुर मरे जीवन नाही तान चोटे से थी जो मरे लगी सा परवान जिसनो लाए तिस लगे लगी ता परवान परम पे कामना।

पावसी परम ज्योत जगाए बाजा वावसी मनोज अंधे अंधे कूप कहा बिरदना जाननी माले अंधे उंधे कवल दिसन खरे करूप एक कहे जानन कहा भूजन ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नादना बेदना गे रस रस कसना जनांत एक ना सदना बोधना अकल सार अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नरस लखार जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिद ब्राह्म जप तप संजम कमावे कर्म सील संतोख का रखे धर्म बंधन तोड़े होवे मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जोगत खत्री सो जु कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाणे बीजे दान सो खत्री धरगे परवान लाभ लोभ जे कूड़ कमावे अपना कीता आपे पावे तन न तपाए तनूर ज्यो बालन हड न बाल सिर पैरी प्या क्या फेड़िया अंदर पिरी समाल सबने कटी सो वसै सबन कट न कोय नानक ते सुहागणी जिना गुरमुख प्रगट होए जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तार तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जै सिर दीजे कान न की जै नाल कराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मरण जापे मूलिया आवे किते थाए ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंध वर्तावा पाओ दूजा गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कल्ले उठी चले साधना ही आवे ही गले राम सूरे दल मेल वे अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेविय मंथन जुज पार सीता लह गया दहसरो लक्ष्मण मोह सराप नानक करता करणहार कर वेखे था पोथाप मन मैं झूरे राम

नानक जो तोर करते लिखिया सुमेट ना सके कोय। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुट परे पंडार। हर गुण बाणी उचर है अंत न पारावार, नानक सब कारण करता करे कर करे बेखे सृजनहार। गुरमुख अंतर सहजया मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे उंग न पुख है अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे।

बंधन बांध पवायन करना कछु न जाए, जन को कृपा तारियन तेना सतगुर मिले आए। सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुभाए, नानक भक्ति रत्या हर हर नाम समाए। मन मग चंचल मत है अंतर बहु चतराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तल थाए ना पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, बिन सत गुरु जम काल ना छोड़ई दूजे पाए खुआई। जो मन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई, पुत गलत मोहित है अंत बेली को ना सकाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए ना बसे मन आई, नानक

ना गुरमुख जो हर सेव दे जन नानक ताका दास माया पुअंगम सर्प है जाके रिहा बिख माए बेका मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जन को पूर्व लिखिया तन सतगुर मिलिया आए मिल सतगुर निर्मल होया बिखो मैं गया बिलाए गुरमुखा के मुखू जले हर दरगाह शोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तन जो चल सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदे हर लिवलाए निर्वैरे नाल वैर रचायदा अपने कर लुकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है आंदन जले सदा दुख पाए।

बेसुहा के रे पुत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम ना चेतने करते आपको आए, हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुर लागे पाए, नाम लगे से उभरे बिनावे जंपुर जाए, नानक बिनावे सुख नहीं आए गए पछताए, चिंता धावत रह गए ता मन पया आनंद, गुर प्रसादी पूजिए सतन सुति निचिंद, जन को पूर्व लिखिया तना पेटिया गुर गोबिंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद, सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का भाणा मन लैन हर नाम रखे उर तार, एथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द संजाप दे तित साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर परम प्यार, जम काल नेड़ न आवई आ बख्शे करतार, नानक नाम रते से तनवंत हैन निर्धन होर सं

गुरमति ज्ञान रतन मन बस सब देख्या ब्रह्म सुपाए, नानक सतगुर बोहत बड़पागी चढ़े ते पोजल पार लंघाए। बिन सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार, गुर कृपा ते

जन नानक हर गुण गाए तोर हर प्राव करते लिखिया सो मेठना न जाए जियो पिंड सब तिसदा प्रतिपाल करे हर राय चुगल निंदक भुखे रोल मुए इना हाथ ना किथा उपाए बाहर पखंड सब कर्म करे मन हिरदे कपट कमाए खेत शरीर जो बीजिए खेत शरीर जो बीजिए सवंत खलोआ आए नानक की प्रभ बेनती हर पावे बख्श मिलाए मन आवन जान ना सूझे दरबार माया मोह पलेटिया अंतर ज्ञान गुवार तब नर सुता जागया सिर डंड लगा बो पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पाइन मोख द्वार नानक आप उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगाह गुरु शब्द से आपे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सोए गुरमुख बूढ़े कदे नाही जिन अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद बवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नदरी इको आया सवातम राम पशान मनमुख बालक बिरद समान है जिन अंतर हर सुरत नाही विछो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय के जाही गुरमुख अच्छे निर्मल है गुर कह शब्द सुभाए उना मैल पतंग न लग गई जे चलन सतगुर पाए मन मक झूठ न उतरे जे सौ धोबण पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंग समाए बुरा करे सो के हास जय अपने रोह पे ही दज मन मुख कमला रगड़ लूजय गुरमुख होए ते सब कुछ सूजय नानक गुरमुख मन सो लूजै जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार ओए मानस जून ने आखियां न पशु टोर गवार उना अंतर ज्ञान ध्यान है हर सो प्रीत प्यार मन मुख मुए विकार मैं मर जमे वारो वार जीवन ध्यानो मिले सुजीव दे हर जग जीवन उर तार नानक गुरमुख सोने ते सच्चे दरबार हर मंदिर हर साजिया हर बसे जिसना

जन नानक जप हर नाम, त्रासरी त्रवंती जानिए भाई, जा सतगुर की कार कमाए, तन मन सौंपे जी सौ पाई, ले हुक्म फिराओ, जय बैसाव बैस पाई, जय पे जय तह जाओ, एवड तन होर को नहीं पाई, जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा पाई, सदा सच्चे के संग रहाओ, पैनन गुण चंगियाईया पाई, अपनी पत के साधिया पे खाए, तिसका क्या सलाही है पाई, दर्शन को बल जाए, सतगुर बिच वड्डिया वड्याईया पाई, कर मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जान नहीं पाई, दूजे पाए फिर आए, संगत टोई ना मिले पाई, बैसन मिले न था, नानक हुक्म तेना मिलाय सी पाई, जना तुरे कमाया ना हो, तिन बेटो हो वारिया पाई, तन को सद बलहारे जाओ, से दाड़िया सचिया, जे गुर चरनी लागन, अनदन सेवन गुर अपना, अनदन अनदर हन, नानक से मो सोने सच्चे दर्द सन, मुख सच्चे सच दाड़िया, सच बोले सच कमाहे, सच्चा शब्द मन बसिया, सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन, उत्तम पदवी पाहे, सच सुने सच मन लैन, सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगा बैसना, सच्चे माहे समाहे, नानक बन सतगुर सच न पाईए, मनु भूल जाहे, बावी हा प्रयो प्रयो करे, जलनद प्रेम प्यार, गुरमल शीतल जल पाया, सब दुख निवारण हार, तस चूके सहज उपजय, चूके कूक पकार, नानक गुरमुख शांत होए, हर नाम रखे रखो उरतार।

दुर्लभ मानुक दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरधा जन्म सरान जो प्राणी निस दिन भजै।

बिसरहिओ गोबिंद नाम, कौ नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम, प्राणी राम न चेतहि, मद माया कह अंध, कौ नानक हर भजन बिन परत ताहे जम्बंद, सुख में बहु संगी पै, दुख में संग न कोय, कौ नानक हर भज मना अंत सहाई होए, जन्म जन्म परमत फिरयो मिटियो न जम को त्रास, कौ नानक हर भज मना निरपै पावै बास, जतन बहुत मैं कर रहे हो,

ओंकार जाग सोपन जहो जान इन मैं कछ तेरो नहीं नानक के हो बखान गर्व करत है देह को

पाजो एक मन हो एक चित तीरथ भरत आर दान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जात ते

सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच ब्रंगण संग लापे आठो नंदन प्रथम राग भैरव वह कर ही पंच रागनी संग उचार ही प्रथम भैर भी बिलावली पुनिया की गा वह बंगले फोनस लेकी के पे बारी है पैरों की पंचो मारी पंच मर्द सा सुना वह बंगाल मद मात वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत यस पुत्र भैरव कह गावे गायन पातरे दुधिया माल कौ सकला पै संग रागनी पांचों था पै गोंड करी और देव गंधारी गंधारी सिंहती उचारी तनासरी है पांचों गाई मारा कौ सक संगलाई मारु मतंग में वारा पर बचन कौसके अबारा खोहड़े पौर नद गाए इष्ट माल कौ सक संगलाए पुनाए हंडोल पंच नार संग सोती उठे तानक लोयल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर साई सरसी लह पार जा संलाई पंचों आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बे मंगल सहाय सरस बान हुआ बनोदा गावे सस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशेली पट मंजरी टूटी कई अलाप कामो दियो गुजरी संग दीपक कह थाप कालंका कुंतले ओ रामा कमल गो चंपक कह नामा गौरा ओ कमला कले अन्ना अष्टपुत्र दीपक कह जाना सब मिश्रा वह गावे पांचों संग ब्रंगण लावे बैरारी किरण आटी तरी गवरी गावे आसा वरी ते पासे सिसवी अलापी श्री राग सिंह पांचों तापी सालु सारग सागर आय और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग गुण कौंबीर कष्ट मेरा वे गावे पांचों संग ब्रंगण लावे सोट गुण मलारी तुनि पुन गावे आसा गुण गुनी उच्च सुसो पुन किनि मेघ राग सिंह पांचों चीनी बैरा दरगे दरगे धारा जब ली तनड़े हो जल तारा पुन गावे शंकर।

तुमरे गात मैं तुम ही नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी अक्या ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै। गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जे डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरया करन हुन दे आवे ताए। सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह, तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। ओ सब थाई होई सहाय, दसो पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दा ध्यान तर खालसे च। बोलो जी वाह। पंजां प्यारियां, चौं सबजादियां, चालियां मुक्तियां, अठियां जपियां तपियां, शहीद सिंघां सिंघणियां, जिन्हां नाम जपया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाई, दे के अंडट कीता, तिन्हां गुरमुख प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे च। बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सिह दित्तै, बांध बांध कटवाए, चरखड़ियां ते चढ़े आ रहा नाल तन चरवाए, उबलदियां देगां विच उबाले गए खोपरियां लुहाइयां, गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया, असहे ते कहि उसार दे सीधो सिकिद के सा सवास संग नभाई, धर्म नहीं हारिया। तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे च। बोलो जी वाहे। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तर खालसे च। बोलो जी वाहे। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी,

दर्शन परस्या गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहिगुरु साहब जी राग सूरठ बाणी भगत कबीर जी की कर दूजा क्या पढ़ी है क्या गुणी है क्या वेद पुराना सुनिया पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिलियो सोई क्या पढ़ी है क्या गुणी है क्या वेद पुराना सुनिया पढ़े सुने क्या होई

क्या सोचे बारंबार रहो अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्ते अगोचर लही है बस्ते अगोचर पाई कट दीप गृहया समाय कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मनिया मन माने लोग ना पति जाए।

0: जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: साहिब दे दरबार साहिब के दरबार दियाँ हाज दियाँ पढ़ रही गुरु सारी साध संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कोटां कोटां धन्यवाद है साहब श्री ग्रंथ साहब जी का, जिन्हों का वोट आसा लैके परसों रोज तो हर साल की तरह इस साल भी नगर लौंगोदेवा जिला जीरा की संगत वालों जो अखंड पाठ साहब शुरू करवाए गए सन, गुरु कृपा हुई, निर्विघ्नता साहब संपूर्ण होए हैं तथा भोग पाए गए। अरदास बेनती हुई है, गुरु महाराज ने हुक्मनामे की बख्शिश की। आओ अरदास करिए, जो परसों रोज तो जो बाणी पढ़ी सुनी जपी जा रही सी ते अज दे हुक्मनामे दे जो भाव अर्थ हैं साड़ी समझ विच आ जाण ते असी अपने जीवन नू जो है गुरु आशी अनुसार गुरमत दे अनुसार गुरबाणी दे अनुसार चलाउण दा यतन कर सकीए। नगर लौंगोदेवा की संगत हर साल जो है गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे जो अखंड पाठ साहब की सेवा करते हैं अपने नगर की इलाके की इत्थे आईयां संगतां की परिवारां की सुख शांति वास्ते अरदास हुंदी है। यह जो आप जी हर साल यह सेवा करवाउंदे हो ये जिथे असी गुरु महाराज वालों बख्शिया दातों का शुकराना करते हाँ उस दे नाल नाल ही अपने परिवारों नूं बच्चियां नूं आने वाली पनीरी नूं जो है वो उन्हां नूं असी जो है अपने कल्चर का भी सुनेहा देंदे हाँ कि साढ़े दुख सुख किस तरह असी गुरु महाराज के चरणों में जा के अरदासां बेनतियां करते हाँ तो सुख शांति जो है वह असी मंगते हाँ। ये जो आने वाली पनीरी है वह भी साढ़े जिथे धर्म नाल जुड़ी रही है नाल दी नाल साढ़े कल्चर नाल भी जुड़ी रही है। सो जो प्रबंधक वीर हैं आप सब जानते हाँ कि इन कंट्रीज दे विच अपने रजेवियां पर इस समय दे विच समा कढ़ के यह कमां लई जो काफ़ी समा लगता है वह समा देना पैंदा है तो इस दे नाल नाल ही सारिया संगतां नूं जो है इनफॉर्म करना उन्होंने तई पहुँच करनी तो ये बड़ा एक काफ़ी वड्डा काम हो जाता है। तो जो संगतां वालों जिन्ने भी प्रबंधक वीर हैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ही तरह जो प्रबंधक वीर हैं वह भी संगतां के सहयोग तो बिना जो है यहोजे प्रोग्राम चलाने औखे होंदे हैं। प्रबंधक वीरां वालों संगतां का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो परसों रोज तो जो जिन्हें भी वीर भैन लंगरां विच इत्थे दरबार हाल विच जो सेवा कर रहे हैं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा वालों असी समूह नगर निवासियों का बहुत धन्यवाद करते हाँ जिड़े कि हर साल गुरद्वारा साहब विखे यह समागम रचाते हैं। मैं आप जी ने एक गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा वालों सद्दा भी देना चाहता हाँ समूह संगत को, ते नाल एक खुशी की खबर भी सांझी करना चाहता हाँ कि गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा वालों जो नवी इमारत पिछे जा के जिथे एंड दे उत्ते पार्किंग लॉट दे कोई 75,000 स्केयर फुट का जो गुरद्वारा साहब नवी इमारत बन जा रही है उसकी शुरुआत वास्ते जिहड़ा 20 तरीक नूं ऐतवार आना उस दे 12 बजे जो है बाहर आपां 5 प्यारियां दी अगवाई दे विच टक ला के उस बिल्डिंग की शुरुआत करनी है। सो सब वीरां भैणां नूं सद्दा है कि जिस तरह आपां इस पहुँचते हाँ उस दिन भी हुम हुम आ के 12 बजे जरूर गुरद्वारा साहब विखे पहुँचना। तो इस खुशी के मौके पर आ के सब नाल रल मिल के अरदास बेनती विच शामिल होना कि जो यह एडा वड्डा प्रोजैक्ट शुरू होण जा रहा है गुरु महाराज अपना सिरां ते हथ रख के जो है ये नेपरे चढ़ा लैन। सो एक बार फिर आप सब जी नूं प्रबंधक वीरां नूं खास करके संगत नूं भी ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜੋ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੱਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੀਰਤ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਨਗਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਦੀਵਾਨ ਦੁਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। केड़ा मंत्र कदों पढ़ना एन पूरा उन्होंने एक डिसिपलिन नहीं किया होंगे जिम्मे यज्ञ के लिए उन्हें एन डिसिपलिन जिम्मे मान लो आप श्री अखंड पाठ साहब कराने तो वह एक विधान है ना भी जोड़ा पाठी है वह लगातार उन्हें पाठ करते जाना जे वह डिसिपलिन भंग हो गया तो आप आखेंगे फिर अखंड पाठ भंग हो गया वो शब्द फिर भी हमने अखंड पाठ नहीं रहा एक डिसिपलिन है एक मर्यादा है वो तहत बाणी पढ़ी जाती है। हुण सतगुरु कहिंदे आ तैनूं मैं दसां भी इस यज्ञ दे लई डिसिपलिन किहड़ा धारण करना वो डिसिपलिन किहड़ा है पंच तश्कर तश्कर कहिंदे ने जी चोर नूं तावत राखे तेरा मन जिहड़ा है पंजां विकारां वाले बन्ने ना भजे ऐदां डिसिपलिन मेनटेन करना इस यज्ञ दे लई इस खंड पाठ दे लई पंच तश्कर तावत राखे चूका मन अभिमान ते मन दे विचों अंकार दूर करना अभिमान दूर करना। अच्छा ये गल मुसलमान नूं भी बाबा जी ने कही सी उन्हूं वखरे तरीके नाल थोड़ी जी कही उन्हूं कहा जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत वो डिसिपलिन की रखता भला वह कहता भी जदों मैं नमाज पढ़नी है तो मेरे कपड़े नू लहू नहीं लगा होना चाहिए जे लहू लग गया तो मेरा जामा पलीत हो गया वह बदल के आएगा उन्हें चेंज करेगा इदा डिसिपलिन धारण करेगा। तो बाबा जी ने उन्हें आख्या नहीं ये डिसिपलिन नहीं आ तेन मैं दसदा जे रत लगे कपड़े